बचा रहा समझदारा बिचारा तुम्हारा कोलिनर समझो सर आपको कोलिनर है वो और नवर का चिता